भुगत प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैवं स्वरूप भेदी अनूप है, समस्तो प्राज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है।

दानिए दर दे सच्चा हुए कूड़ की मल उतरे तान करेगा सत हो सच तर जानिए जा सच धरे प्यार ना उस सुन मन रहसी है ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए।

कहे स्तंभर स्वामी सच में अस सच रहे। साम कहे स्तंभर स्वामी सच में अस सच रहे। सब को सच समा

हमें अब कौन पर एक गुण नाही अमृत शाट बिकह बिख खाई माया मोह परम पै भूली

लख दरियाओ कुदरत कावण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जापो असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर

मन मंत अंत न जप कीता आकार अंत न जप पारा वार अंत कारनो केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कही आ बहुता होए वड्ढा सहब ऊचा था ऊचे उपर ऊचा नाव एवड़ ऊचा होवे कोए तिस ऊचे को जाने सोए जे वड आप ते जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए।

प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहता।

परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गजबाज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चवर तख्त छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जाग दी जोत। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार के दो परिवारों का सुमेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके उत्ते दास खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूरों नेड़े आए हुए सारे पतवंती सज्जणा का तह दिलों धन्यवाद अते निघा जीव कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for coming here today, for being here as we witness two souls merging into one in the presence of our eternal Guru. So Sadh Sangat Ji, as we are sitting in this Darbar with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes a collective responsibility to maintain the integrity and decorum of the Darbar, which means absolutely no talking, listening to the Kirtan and paying attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got translations in English too. Sadh Sangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai. Apne jo niji vichar ne, galla bata ne, kirpa karke unhan nu sankochan di kirpalta karo, chup da daan bakshish karo. अपनी सुरत अपना ध्यान असी शब्द दे विच जोड़न दा यतन करना है। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है उत्थे ही सतगुरां पासों अपनियां झोलियां भी असी खुशियां अते खेड़ियां दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी पढ़नी आउंदी है जां बाणी कंठ है उह वी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने, आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी हरमनप्रीत सिंह ढड्डा, सपुत्र सरदार नरेंद्र सिंह जी ढड्डा ते माता जी जसबीर कौर ढड्डा, परिवार का पिछलेरा पिंड ढड्डा अते इस वक्त परिवार ब्रैम्पटन ओंटेरियो तो इतने पहुँचा है। हरमनप्रीत सिंह दे दादा जी सरदार तीरथ सिंह जी ढड्डा अते दादी जी का नाम माता जगदीश कौर ढड्डा है। इन्हां दे नाना जी सरदार जगदेव सिंह जी मान अते नानी जी बीबी गुरदयाल कौर मान हन। एसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी अमनीत सिंह, सपुत्री सरदार मक्खण सिंह जी अते माता जी संदीप कौर नागी। परिवार दा पिछलेरा पिंड जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब अते इस वक्त परिवार बर्ड बीबीसी दा निवासी है। अमनीत दे दादा जी सरदार प्यारा सिंह जी अते दादी जी दा नाम माता गुरबचन कौर है। इन्हां दे नाना जी सरदार जीत सिंह जी नागी अते नानी जी बीबी कुलदीप कौर नागी हन। सो इस दोनों ही परिवारों की संखेप रूप विच जानकारी। हुण साध संगत जी आरंभता दी अरदास होवेगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी अते इन्हां दे जो माता पिता हन अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के हाजिरी लवाउणगे। बाकी साध संगत के चरणों में बेनती है कि अपने अपने स्थानों पर सजे रहो। सो मैं बेनती करूँगा हरमनप्रीत सिंह, अमनीत सिंह अते इन्हां दे जो माता पिता हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाण। सो आई एम गोइंग टू आस्क द कपल एंड द पेरेंट्स प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर, उपरांत सतगुरां दा मुख वाक ज्ञानी रणजीत सिंह जी आप जी नूं सरवण कराउणगे। आओ प्रेम सहित हाजिरी लवाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सब गैन आप कमाने भी छुड़ी दोष न काहू देन कर कृपा प्रभ राख ले होर ना ही करन करेन हर तुद्विन खाकू रूलड़क कहिए किथे वैन नानकी बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरसा सो सुने हसमरथ पुरख अपार मन जीवन आराधना सवना काय आधार ससरे पेये तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊचा गम गाद बोध किश अंत न पारा वार सेवा सा तिस पाप दी संता की होय शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आदि जुगादी रख द सच नाम करतार कीमत को न जानी को नाही तो लड़हार मंत ने अंतर वस रह नानक नहीं सुमार दिन रैन जे प्रभु को खो सेव दे तिनके सद बलिहार संते राधन सद सदा सवना का बख्शंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दितिन जिंद गुर शब्दिया राधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कह न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरि दोख सवे ही हंत दिन रहन जिस न विसरै सो हरिया हो वे जंत सर्व कला परपूर्ण मंजन माणी थाओ हर उड़ गई मन अंदरे जब जब जीवा नाओ कर कृपा पर अपनी जंतूड़ी संग समाऊ जो तू राखे त्यों रहा तेरा दिता पैना खाऊं उद्यम सोई किराए प्रभ मिल साधु गुण गाऊं दूजे जाए न सूजी किथे कूकण जाऊं ज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे।

मेला दूजा देंदे थामो दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत चतराई तां की क्या करे आख वखाणीए अंदर बह के कर्म कमावे सोचो कुंटी जानिए जो धर्म कमावे तिस धर्म ना होवे पाप कमाणे पापी जानिए तू आपे खेल करें सब करते क्या दूजा आख वखाणीए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोले बिन ज्योति कोई किश करो दिखा सिहाणीए नानक गुरमुख नदरी आया हरेको सुगड़ सुजाणीए पौड़ी तुद आपे जगत पाके तुद आपे धंधे लाया मोठ गौली पाके तुद आपो जगत खुआया तिश्ना अंदर अग्न है नै तिपते भुखा तिहाया सहसा ए संसार है मर जमे आया जाया बिन सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमत्ति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उदारे अपना धन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया श्लोक महला दूजा अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना जीबे बाजों बोलना इउं जीवत मरना नानक हुकम पछाण कै तो खसमे मिलना मैला दूजा दिसै सुनिए जानिए साओ न पाया जाए रोला टुंडा अंधला क्यों कर लगे ताए पै के चरण कर भाव के लोइण सुरत करे नानक कहे सियाणीए एवकंत मुलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तद दूजा खेर चाया होमें गर्भ उपाय के लोभ अंतर जनता पाया जो पावे तू रख तू सब करी तेरा कराया एक ना बख्शे मेल लै गुरमत्ति तुदे लाया एक खड़े करें तेरी चाकरी बिन नामे होर न पाया होर कार विकार है कि सच्ची कार लाया पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया ओ अंदरों बारों निर्मल सच्चे नाए समाया श्लोक महला पहला सोने के पर्वत गुफा करी कै पानी प्याल कै बिज धरती कै आकाशी उर्दरहां सिर भार पुर कर काया कप्पड़ पैरां तोवां सदाकार बग्गा रत्ता पीला काला बेदां करी बकार हो एक चीर रहा मल धारी दुरमत मत बकार ना हूं ना मैं ना हूं होवां नानक शब्द विचार मैला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजन होए अंतर मैड लगी नहीं जाने बारों मल बल धोवे अंधा भूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमे बिज दुकाले नानक गुरमुख।